0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.